नाम खसम का चित न किया कपटी कपट कमाना। जे तू किसे न दे मेरे सहबा क्या को कढे गना। नानक बिनवे सो किछ पाईए पुरब।

परम सत्कार योग साध संगत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इंटरनेशनल कीर्तन काउंसिल दे समूह कीर्तनी जथिया वालों अते श्री गुलशन कुमार तीसरी ज्वालिया वालों खालसे दे 300 साला साजना दिवस नु समर्पित अज ए आत्मरस कीर्तन दरबार किया जा रहा है। इस कीर्तन दरबार दे विच पहली वारी इतने सारे गुरु के कीर्तनी इकट्ठे इको स्टेज ते बह के प्रेम भावना श्रद्धा दे नाल गुरु जस आप संगतां नूं सरवण करा रहे हैं। सब तो पहला कीर्तन दी सेवा कर रहे हैं साडे सिख कौम दे महान कीर्तनीए इंटरनेशनल कीर्तन काउंसिल दे चेयरमैन भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले, इन्हां दे नाल वाजे ते सेवा कर रहे हैं इंटरनेशनल कीर्तन काउंसिल दे उप चेयरमैन भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले नाल बैठे हैं, उप प्रधान संत नूप सिंह जी ऊना साहब वाले और उन्हां दे नाल बैठी हैं भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी काउंसिल दे खजांची, उन्हां दे नाल बैठी हैं भाई गुरचरण सिंह जी रसिया लुधियाने वाले जनरल सकत्तर काउंसिल दे। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੇਵਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਧਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋਛੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ।

धन गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द विच नाम दी महिमा नूं वर्णन कर रहे हैं कि नाम मनुख नूं किथे पहुंचा देंदा। नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए, नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डियां सों क्या रीश। नाम दी महिमा, भगत नामदेव शींबा जिसने भगती कीती, राजे महाराजे अमीर गरीब सारा संसार आके नमस्कारा करन लगा, ये किदा सदका है, नाम दी बरकत है। आड़ दाम को शीपरो जिदी अद्धी कौड़ी भी कोई कीमत नहीं सी, कोई आदर दे के कोल नहीं सी बैठन देंदा, जपया नाम मन करके ते जदों जपया ता फिर राजे महाराजे आके नमस्कार करन लगे। ते नाम दी महिमा है। कबीर भगत ने नाम जपया, गुणा दा खजाना बन गए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। किदे सदके? नाम दे सदके। गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं कि बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, एडी प्रीति पै गई कि एक भी श्वास बिना जपन दे हुण व्यर्थ नहीं हो सकता। आख्या कम कार क्यों छड बैठे हो, तो कबीर जी कहने जब लग तागा बाहों बेही तब लग विसरे राम सनेही। जदों तागा खड़ी दा टुट जांदा है ते फिर उसनू नलकी विच पाके मुंह दे नाल खिचना पैंदा है, तां ओ श्वास मेरा बिना जपन दे चला जांदा है, व्यर्थ हो जांदा है, ते मेरा जपन तो बिना श्वास मेरी मौत है, आखां जीवां विसरे मर जा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू नाम दी प्रेरणा दित्ती कि नाम किथे पहुंचा दिंदा है मनुख नूं। रविदास टवंता टोर नीत, भगत रविदास मरे होए टोर टोण वाला। ते जदों नाम सिमरन विच जुड़ गया मन, ते फिर की होया, भगवान दे दर्शन होए। जो बचन करदे हन ओह बचन कदे व्यर्थ नहीं जांदा, परमेश्वर आप आके रसना ते बैठ के बख्शिशां करन लगे। रविदास तवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया प्रगट होआ साध संग। साध संगत विच प्रगट हो गया भगत रविदास, भगत भगत जग वज्जिया, वज गया कि रविदास वड्डा भगत है, श्रोमणी भगत है। उच्चारण करो श्री, इसलिए प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया। भगत सैन जी ने जदों सिमरन कीता, भगतां दी महिमा सुनी आपने के भगत रविदास वड्डा भगत है, कबीर जी दी जय जयकार हो रही है, नामदेव दी जय जयकार हो रही है, तां सैन जी दे मन विच भी एक ख्याल आया जे मैं भी जपां तां मेरा भी संसार ते आउणा सफल हो सकदा है। ते जदों जुड़ गए सिमरन दे विच, सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदे वस्या पार ब्रह्म। जदों नाम रूपी पार ब्रह्म हिरदे विच वस गया, फिर भगतां दी कतार विच जा खड़ोते, भगतां में गणिया। हुण इन्हां जातियां दा नाम जदों तन्ना जट जी ने सरवण कीता ना, भई जय जयकार हो रही है भगतां दी, ते नामदेव दे मन विच भी प्रेरणा आई, क्योंकि कीर्तन सतसंग इसे लई सरवण करीदा कि तिना देख मन चाओ उठंदा,
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਾੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਜਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨਾ। ਜੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਸੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਚਰਨ ਪਕੜਦੇ, ਬਈ ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੇ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਵਧਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ।

0: नाम विच कितनी बरकत है। भगत कबीर जी नू कोई पुछन लग्या कि महाराज ओ प्रभु दा सिमरन किवें करिए, उस मालक दा सिमरन किस तरह करिए, तां कबीर जी कहंदे न राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जे जपना तां त्रूप वर्गी दृढ़ता होवे, प्रहलाद वर्गी दृढ़ता होवे। प्रहलाद ने भी अपने पिता हरनाकश नूं कह दिता सी, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो अवर परन स्यों नहीं काम। जा जो करना ही कर ले, मैं राम नाम जपना नहीं छड़ सकदा। मां ने समझाया प्रहलाद नूं, भई तू इको एक मेरी अख दा चानन है, मैं किवें जीवांगी तेरे तो बिना, तेरा पिता तैनूं मरवाउणा चाहुंदा। छड़ राम नाम जपना, ओ जाने इसे दा ही नाम जपी जा। तां प्रहलाद जी कहन लगे, मां मैं ओ पुत्र नहीं बनना चाहुंदा जेड़े पुत्र अपनी कुल नूं गाल पवा देंदे हां, अपनी कुल नूं दाग लवा देंदे। गुरु की बाणी विच लिखिया, पुत्र प्रहलाद स्यों कहा माए, परविरत ना पढ़ो रही समझाए, निर्भो दाता हर जीव मेरे नाल। प्रहलाद कह रहा है, ओ निर्भो दाता मेरे हृदय विच वस रहा है, भला मैनू कौन मारन वाला जवे। निर्भो दाता हर जीव मेरे नाल, जो हर छोड़ो तो कुल लागे गाल। जेड़ा मनुख अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम नहीं करदा, महाराज कहंदे ने उसनू सौ उलांबे तां दरगाह विचों दिने मिलदे हन, ते हजारां उलांबे रात नू मिलदे हन, भई अमृत वेला भी तू सौ के बिता देता। सौ उलांबे दिने के राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। तैनू हंस बनाया सी तू, फिर डड्डा कीड़िया वाल तेरा ख्याल है, डड्डा कीड़िया रूपी धंधिया में ही हर वेले रुझिया हुए। तो प्रहलाद जी कहन लगे, मां ना ओ मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम बसे मन माहे। इसलिए मैं राम नाम जपना नहीं छड़ सकता। भगत कबीर जी भी दस रहे हैं, मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहाड़, एक राम ना छाडो गुरे गार। मैं जे अपना नित नेम त्याग देवा, अपना धर्म त्याग देवा, मेरे गुरु नू गाल लग जाएगी, ते जेड़ा मनुख गुरु वल उंगली करा रहा है, ओ कदों बख्शिया जाएगा। भाई धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने भी छाडे ते यही उपकार कीता, भाई गुरु वाले बनो, यही बख्शिश कीती। कोई जात पात ऊंच नीच दा पेव पादन भाव नहीं रखिया, बाई तार दे पहाड़ी राजिया ने सुनिया भेजिया सी, महाराज असी अमृत छकन नूं तैयार हां, पर साडे वास्ते अमृत दा बाटा वखरा तैयार कीता जावे। असी इना नीच जातियां नाल बह के अमृत नहीं छक सकदे, क्योंकि इक्के बाटे विच अमृत दी दात देनी पैंदी है, अमृत पीना पैंदा। महाराज कहन लगे, कदी नहीं हो सकता, ये जगत दे जितने जीव हन अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार हन, ते सारे भरा भरा हन, कोई ऊंच नीच जात पात नूं मैं अंदर नहीं वड़न देना। ते 300 साला खालसे दा साजना दिवस आ रहा है, हजूर ने बख्शिश कीती सी अमृत दी दात साडे मुख विच पा के सानू गुरु वाले बनाया। एक वेरा प्यार नाल आखो, धन गुरु गोबिंद सिंह,
1: धन गुरु गोबिंद सिंह,
0: जिन्हां ने बख्शिश करके रहमतां करके अपना सब कुछ गुरु वालियां दी झोली विच पा देता। मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो तन है, सब ही इन ही को। जेड़ा सपुत्र हुंदा है ना, पिता उसनू खजाने दियां चाबियां ही फड़ा देंदा है, भाई मैनू आराम कर लैन दे, हुण तू कम चला। तो 300 साला ते साजना दिवस ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਈ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਗੋਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜੈ ਜਾਣੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਰਸ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਿਰਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਛੱਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਹੇ ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚ ਦਿਸਨ ਰਥ ਪੀੜੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਜੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਢ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀ ਨਾ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ।

भगत मेरे नाल जुड़े है अपना काम भूल गए जे राजे दी मालिश कर ए ना गया राजा इनू सजा देवी।

करे एक दे द्वय सुभता हाथ सोही सुभता हाथ सोही नमो लोहे की पत्रिका झले लहंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बाण गंगा तरंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती।

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद तागड़दन तीरंग

0: भाई नंदलाल जी,
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त, तालबे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तल काल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत प्राप्त हो।

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। सरवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच, इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने, और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हें की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे,
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार पुनः, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। ए जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं, ये वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द सरवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे,
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार कुंड के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चला सुनो नंद लाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंद लाल दे नाल गुरु साहब के बचन हो रहे भाई नंद लाल साहब
1: सुनो नंद लाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
2: एक वर्ण कराऊं
1: वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
0: चार वर्ण एक वर्ण कराऊं
1: वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज देश खालसे को तुर्क

0: सिखा से को पुरत जाएंगे पार, देख खालसे को पुरत जाएंगे पार।
1: लाख सो एक चरे सिंह
0: किस मुकरण नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत बजे। सवा लाख जब धुखे पलीता, सवा लाख जब धुखे पलीता, तबे खालसा उदे

छत्री को पूत हां, चर्दी कला दी बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह जी। छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, तैता पे आवत हां जो करो और जंजार जितो ग्रह को तोहे त्याग कहा जितता मैं धरो, और जंजार जितो ग्रह को तोहे त्याग कहा चितता मैं धरो, अब रीज के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो, जब आम की आग निदान बने

खिलौना, अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी, अस खिलौना।

आनको दान न लागत नीको, आनको दान न लागत नीको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और

लखनऊ चल गण गंधर्व सभा सुखराज जमपुर गया पुकार सुन मिल रामन जी धर्म राय आखियो सब नादी कर बंग चला करे बेनती धर्म राय हो सेवक ठाकुर गणे धर्म सिंह पाप न पूछ गुरमुख ना अतुल

गुरमुख जन्म सवार दरगे सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका सदे उठी जा गुरमुख सदे जान आवन कल्ले गुरमुख सदे जान।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने।

तेरा हुक्म अपार है, तेरा हुक्म अपार गए कोई अंत न पार, तेरा हुक्म अपार गए कोई अंत

करके हाथ जोड़ के बैठ गया। कहने लगा बादशाह, दुनिया ते इन्ने पाप वध गए ने कि जिन्ना बारे बयान करना बड़ा औखा है, खास करके इस एमनाबाद विच ता

जिन्हों पाई जिन्हें ए दुनिया पैदा कीती है, ओ ते एक जगह बैठा होया अपनी खेड प्या देखदा है। पर एक गल है, ओदा न्याओ सच्चा है, आप भी ओ सच्चा है, ते ओदा न्याओ भी सच्चा है।

शेर शाह सूरी नूं कहा कि एक वह भी समा आवेगा कि पहला बाबर का कब्जा हिंदुस्तान से होवेगा। ओ बाबर नूं हिंदुस्तान दे विचों

0: फिर शुक्र कीता। आदेश कहंदे ने मथा टेकना, ऐ बाबा ऐ अकाल पुरख मैं तेनू नमस्कार करदा, क्यों कि तेरा किसे ने अंत नहीं पाया, तू कदी सुख देना है कदी दुख देना है।
1: आदेश बाबा आदेश।

जे पहला ही चंगे काम करिए ते पाई फिर क्यों सानू दुखां विच पैना पवे। सा सुरत गवाई।

को महिला कहां सुपंक सराय। ओ वड़े वड़े घर, वड़े वड़े महल, किथे वड़िया वड़िया

हिंदवाणी तुरकाणी पटियारण ते ठकुराणी किसे दा सिर पाट गया किसे दियां बाहां वड्डियां गईयां कोई थां ही मर गया ते उन्हां नूं मसाणे विच जाके साड़ दिता गया भाव कि सिपाहियां ने किसे दा विलाज नहीं

पर ए अकाल पुरख सब कुछ ते तू आप करना, मैं किनू आके सुनावा। ए दुख ते सुख तेरे भाने विच, किथे जाके रोईए, क्योंकि सब कुछ तेरे हुक्म विच है। तू जो चाहवे ओही हुंदा है, किदे कोल जाके अपना दुख दसी।

गोयली चराण वाला कि जिस तरह कोई लड़का गावां मज्जां चराण वास्ते लै जांदा है, सारा दिन चरांदा है ते शाम नूं उन्हां गावां नूं लै के वापस आ जांदा है। इस तरह ए इंसान तू भी इस संसार विच आया है, तेरे जीवन दा दिन जदों मुक जाए

इंसान सवेरे घरों निकलता है, झूठ बोलता है, किसी नाल ठगी की थी, किसी नाल धोखा किया, बहुत सारी माया कमाई ते घर चला गया। तिया पुत्रों नु खुश किया कि मैं बड़ी माया लेके आया, झूठ बोल बोल के अपना घर बनांदा है। पर साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू ते घर प्या बनाना है, जरा देखता सही, जाग्यो जाग्यो सूत्यो चल्या वन जारा, तेरा गवांडी ते उठ के तुर भी पिया है, तेरा घर भी

जे ता तू हमेशा इत्थे रहना है ता घर बार बनाई जा। पिंड कहंदे ने इस शरीर नू, इस शरीर विचों आत्मा निकल गई ते शरीर खत्म हो जाएगा।

वो क्यों मर गए? ओनू नहीं सी मरना चाहिए। जेड़ा मर गया है ना ओनू तुसी रोंदे हो। साहब जी कहंदे ने ओने तो मरना ही सी। जिनू तुसी रोंदे हो अपना फिक्र करो कि कल नू तुसी मरोगे तो तुहानू कौन

कोई काम कर लो। ज्यों लाहा लाहा कहंदे ने लाभ, तोटा कहंदे ने नुकसान। जे किसे काम विच लाभ है ते नुकसान भी जरूर है, ते पाई जिहड़ा जमया है उन्हें मरना जरूर है। ते परमेश्वर दी रीत है, ते हुंदा ओ है।

दिलासा दिता, उन्हां ने रोना पिटना बंद कीता है। धन गुरु नानक साहब उन्हां लोकां नूं दिलासा दे के वापस मुड़े तां पता लगा बाबर ने हाली

अपने ते दोष नहीं लिया। इमना बाद दे लोक बड़े पापी सन, उन्हां लोकां नूं सजा देनी सी, पर तू जम कर मुगल चढ़ाया। मुगलां नूं जमा दा रूप दे के इमनाबाद ते भेज दिता, ते उन्हां ने इत्थे दे लोकां नूं कतल कर करके गलियां दे विच रुला दिता।

पर फिर ताना मारे, फिर शुक्र विच आ गए। ऐ करता या काल पुरख, तू सारिया दा है, पर एक गल है, जे सकता सकता कहंदे नी तगड़े आदमी नू। जे तगड़ा आदमी तगड़े नू मारे ता मन विच रोस नहीं हुंदा, पर ए मुकाबला बराबर नहीं सी। बाबर दे कोल बंदूकां सन ते एमनाबाद वालियां कोल सिर्फ तलवारां ते भाले ते तीर कमान सन, ए कोई बराबर दा

कवि मैं बहुत वड्डा वा, मेरे वर्गा कोई बहादुर नहीं, मेरे वर्गा कोई अमीर नहीं। ते गुरु साहब जी कहंदे ने अकाल पुरख खसमी नदरी कीड़ा आवे, ओ इंसान तेरी निगाह विच एक कीड़ा है के कीड़ियां दी तरह ओ दाने पिया चुगदा है। कई जन्म लैके कई वरी मर के इंसान जिहड़ा है फिर भी तेरे अंत नूं नहीं पा सकिया। खसमी नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता

इस शब्द का उपदेश किया। फिर बाबर ने बेनती की, मेरे ते कृपा करो, मेरा राज अटल रवे। गुरु साहबा ने कहा, बाबर किसी का राज अटल नहीं रहा, पर हां जे सच ते चलने तुहाडा राज रहेगा। गुरु साहबा दे आशीर्वाद दे नाल इन्हां दा राज हिंदुस्तान ते शुरू होया। ज्यों ज्यों बाबर दी वंश ने सच ते न्याय ते प्रजा की देखभाल की, इन्हां दा राज चलदा रहा। जदों इन्हां ने जुल्म शुरू किए ते औरंगजेब दे वेले जिन्हें जुल्मां दी अत चुकी, इन्हां दा राज खत्म हो गया। गुरु नानक साहब तो राज शुरू होया ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह दे वेले इन्हां मुगलां दा राज जिहड़ा सी ए फिर खत्म होना।

शरीर दे नाल चोज कर दे जो मृतक मिथ्या शीला ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे माड़े पा देवे उनू कोई फर्क नहीं पैंदा इसलिए बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार इसलिए मिल मेरे गोबे क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख मनुख नहीं है इसलिए।

तेरे जितने रस भोग तुम सुखा वल भजद चाहना कि मैनू सुख दी नींदर आ जावे किवें आ सकती है। नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने ने आख्या जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा उनू सुपने विच भी सुख दी नींदर नहीं पै सकदी सुपने विच भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए

सोना मनुष्य जन्म प्राप्त करके वाहिगुरु ने तेरे लिए किते प्रबंध किते, माता के उदर में प्रतपाल करे, माता दे उदर विच भी तेरी प्रतपालना कीती, जदों तेरा जन्म होया तामी तेरे सारे प्रबंध कीते, कदी अकाल पुरख दे उपकारां नूं चेते करके तू जप लैंद, आख्या जे नहीं जपिया तां चोर की न्याई जम कुरबादा, क्योंकि अमोलक स्वास प्राप्त करके जिन्हां ने जपिया नहीं फिर जमपुर बदे मारी है, आख्या तिन्ना मुख डरावने जिन्ना विसारियो नाओ, एथे दुख घनेरिया अगे ठोर ना थाओ, पापी कर्म कमाउंदे करदे हाए हाए, नानक जो मथन माधानिया त्यों मथे धर्म राय, एडी सजा दा भागी होवेगा जे तू अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा, इसलिए हर का नाम जिन मन ना अरादा।

नाम ना जपन वालियां ने कितनी ताड़ना की थी, कितनियां त्रिग कारां पाईयां, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग कुटुंब शरीर शहर आख्या ए त्रिगकार उसनू ही नहीं उदे कुटुंब नू ही है जिहड़ा परमेश्वर दा सिमरन नहीं करदा। ते फिर जिवें बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले फरमाया करदे सन, भाई जदों असी परमेश्वर दा नाम भुल जांदे हां तां साडियां आवाजां दुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन, सानू दुख आके घेरदे हन। फिर बंदा विलपदा कुरलाउंदा कहिंदा पता नहीं रब ने की कहर दहा दित्ता, भाई तू उहदे उपकारां नू चेते रखदा तां इह दुख तैनू कदे ना वापरदे। आप क्या करदे सन महापुरख के जदों असी अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन करदे हां उहदा शुकराना करदे हां तां साडियां आवाजां सुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन, जेड़े सुख चित चेते भी नहीं ना होंदे ओह भी मिल जांदे हन। ओह किहदी कृपा, भाई तू शुकराना कर, तू मालक दा कम कर, मालक तेरे सवारी जाएगा। ते जे तू अमोलक स्वास प्राप्त करके नहीं जपदा ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਟ ਵਿਘਨ ਤਿਸ ਲਾਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਘਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਝਾ, ਤਿਨ ਸੁਨੀ ਦੇਹ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ, ਓਏ ਖਪ ਖਪ ਮੂਵੇ ਕਰਾਂਜਾ। ਉਹ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ महापुरख वचन सुनाया करदे सन बाबा जी, कहन लगे एक बिरध शरीर त्यागन लगा ते उदा सारा परिवार इकट्ठा होके बेनती करन लगा, बाबा कुछ जांदियां जांदियां सानू सुमति दे जा, मत दे जा। ता ए बिरध बाबा कहन लगा, भाई मैं अपने जीवन विच तुहानू करोड़ा ही कमा के दिते हन ते हुण मेरे स्वास समाप्त हन, कुछ रुपए खर्च करके जे स्वास ले आवो तां मैं तुहानू कोई सुमति दे देंदा। आख्या बाबा ए तक किसे भी कीमत तो नहीं मिल सकदे। और सच है प्यारी सत संगत, जे सारे जीवन दी पूंजी भी एक पलड़े ते रख दईए ते दूजे पासे एक स्वास दी भी कीमत नहीं असी दे सकते, ते जिस वाहिगुरु ने सानू अनगिनत अमोलक स्वास दिते हैं क्यों ना उदा सिमरन करिए, क्यों ना उदे चरणा विचों सिमरन दी दात मंगिए, जिवें गुरु अर्जन देव पातशाह मंग रहे हैं, मिल मेरे गोविंद।

0: मत को परम भूले संसार निगुरे का है नाव बुरा।
1: जदों गुरु अमरदास पातशाह जी नूं ए एहसास होया, एहसास दिलवाया उस पंडित ने जो कि इन्हां दे नाल तुर रहा सी, जा रहा सी। इन्हां दा नाम उस वेले अमरू है, अमरू करके लोकी जानते हैं। यह हरिद्वार की यात्रा ते जांदे हन हर एक साल, ते सात संगत एक पंडित जो इन्हां दे नाल तुर रहे रस्ते दे विच बैठे, ते पंडित ने कहा भाव कि जदों ये प्रसाद देन लगे अमरू जी, ते उसने पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है। ते अमरू जी ने आख्या भाई मेरा तो गुरु कोई है ही नहीं। ते पंडित ने साफ इनकार कर दिता, कहा नहीं तेरे हद का प्रसाद नहीं लेना, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं, तू हाले तक गुरु नहीं धारण किया, ये तेरी यात्रावां असफल हैं, बेकार हैं, क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है। मैं तेरे हद का प्रसाद नहीं लेना, जिन्ना देर तक मैं तेरे संग रहा, तेरे नाल रहा, ये मेरा टाइम भी व्यर्थ गया, क्योंकि मैं निगुरे पुरुष दे नाल रहा। ते साध संगत जदों मन दे विच ए गल आई, ते अमरू जी सोचन लगी कोई गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिन गुर मुकत ना पाईए पाई, बिना गुरु तो मुक्ति ही नहीं। ते फिर ये यात्रावां इस सब असफल होनगियां, बेकार होनगियां, क्योंकि गुरु कोई नहीं। ते गुरबाणी सानू बार बार समझाउंदी है साडा तां गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जिस दे लड कलगीधर पातशाह ने सानू लाया। ते गुरु होंदियां ते फिर असीं संग ना करिए, गुरु होंदियां हजूर विच ना बैठिए, ए तां होर भी त्रिग इह अजीब आ, ए तां फिर उस तों भी ज्यादा है, क्योंकि जिन्हां दा गुरु है ही नहीं उन्हां दी गल कोई नहीं, जिन्हां दा गुरु है ते फिर गुरु दी हजूरी विच पहुंचन तां ही है ना। जे घर बैठिया ही सब कुछ मन दे विच सोच लिया, इत्थों ही मत्था टेक दिंदे, कई बंदे कह दिंदे इत्थों ही मत्था टेक दिंदे जी, इह गल नहीं है। असीं पड़भागे हां गुरपुरा जिन सिमरिया सही पए निहाल, गुरपुरा पेटियो वडभागी मने पया परगासा, आओ निगरी पुरुष दा यह हाल है, ते आओ वडभागियो असि सारे गुरु वाले हां, काश ए गुरु कृपा करदा रवे साडे ते, विसरना ही दातार अपना नाम देओ, नाम दी बख्शिश करदा रवे सदा, सानू अपने संग लाए रखे, लड़ राए रखे।

सत्संग जी हुण असी पहला शब्द राग गुजरी विच शब्द है केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग ना तनोत जस रणेन जन्म जराद मरण भयंग। सो सात संग जी ए शब्द संस्कृत विच है। असी अपने उस्ताद जी डॉक्टर गुनाम सिंह जी कोलो सिखिया ते थोड़ी बहुत सर्च की थी इस शब्द के बारे ते ए शब्द जिन्हों को इस बारे पढ़े गई असी मन विच बहुत बहुत ही बैराग आई गया। सो आप जी सारे नाल जरूर शेयर करना चाहवांगे कि ए शब्द जड़ा है ये भगत श्री जयदेव महाराज जी का उचारिया होया है। सो जयदेव महाराज जी नू संगत ने पुछया कि सानू सारे ही प्रेरणा देंदे हन कि असी किसी कदी किस नू मनीए कदी किसी नू पूजिए कदी किसी नू वर्शिप करिए किनू असी वर्शिप करिए जिदे नाल असी इस जम्मन मरण दे खेड़े नालों बच सकते हाँ। मन दी होर मन विच पीस आ जावे शांति आ जावे तां ए श्री जयदेव महाराज जी ने शब्द उचारिया केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयन। तू सिर्फ वाहिगुरु जी का नाम जप ना दनोत जस स्मरणेन जन्म जराद मरण भयंग। जिसनू आराधन नाल तेरी पैदायश बुढ़ेपे अते मौत दा डर सब खत्म हो जाएगा। सो सात संग जी असी प्रैक्टिस कीती बहुत अखर थोड़े जे औखे है ते सारियां कोलो पहले ही माफी मंग लैंदे हां पर ए वी आप जी कोलो आशा करदे हां कि आप जी सार ही साडा साथ निभाणा जी। सो आओ जी राग गुजरी विच श्री जयदेव महाराज जी का शब्द।